0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन।
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह।

नवे वरजे नवे हेले नवे खुशालय। द मरगानों फागो आवाजुना और द फिजा ताजा सुकून।

मैं हूँ असमा नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाएं। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और चमक

वेलकम टू द शो मीठू भाई जान क्यूट भाई जान क्या सूरत हाल है भाई सबा जानी साबिर आबाद ना खेरा साबिर आबाद ना खेरा सुख रागली ना साबिर आबाद ना खेरा सबा जानी जमगा प्रोग्राम ना रागली ना वही सासो सवाल जवाब पेशवाश के सवाल जवाब चिकन देगा पेशवाश के और कीमत पे 350 रुपए भी दे खेरा सबा थैंक यू बहुत टाइम बाद आपका सो सुन रही हूँ समनाइस डेरा मेहरबानी मैवीन ने टांग नजम के प्रोग्राम पर आने थैंक यू डेरा मेहरबानी खुशहाल हो सी कामयाब हो सी बिचिया सलाम खातिर भाई वाले को सलाम बहुत टाइम बाद आपकी आवाज सुन रही हूँ आपका सो बहुत नाइस है भाई रोजाना प्रोग्राम के आप किसी फ्रॉम टांग इंशाल्लाह कोशिश वक्त देखेगा बल टाइम देखे जमंग बल रेडियो से खबर रवान रखे रहा रेडियो माने प्रोग्राम सेट शुरू रखे रहा ब्याह पटांगों में गर्क माने रखे रहा लाइव और बरा है उस प्रोग्राम को रखे रखा

सबाह भाई आप ने तो ऐसा वावा किया, लगता है कि मेरा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है भाई। सारी स्वीट सिस्टम को मेरी तरफ से सलाम और आपको स्पेशल सलाम, थैंक यू, मेहरबानी जी, खुशहाल हो सीधे खेरा वाह वाहूर सही हो गा वाह खेरा भाई। आवाज सुनो मैं कुछ आवाज मुकल कर कटी, आवाज बिल्कुल कल कर कटी, जमा सारा नेट लगे सुन सदा लगा मसला था जी। और खान बहादुर से पूछी सलाम कबुल कर, वालेकुम असलम वरहमतुल्लाह, मेहरबानी जी, मैं भी इन वही भाई नजमान भाई लावादे निश्चय दे बिल्कुल निश्चय दे जी, मंगो नहीं जी सवाल वादे दे मंगो भी इतना खबर न करी जी चल का सवाल वादे दे खैर जमा प्रोग्राम करे हफ्ता की सिर्फ यो और हफ्ते पर जमाने भी दे ता सुले जमा सर तुम जमीन निश्चय दे चल कर हफ्ते पर जमाने मुते काल या मास जी सुई हो जा खैर इस खबर न दे खैर खा राजू दे खैर सुले पर प्रोग्राम ना राजू दे खैर सब वाला खंदवर खंदवर प्रोग्राम ने को दे खैर और इंशाल्लाह ताला अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम दाखो दाखो बा आफिया सदीकी

बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल लैला लैला थैंक यू लैला समाज प्रोग्राम टाइम या सब तखेरा इंशाल्लाह इंशाल्लाह हर हफ्ते पुरुष माने सहर 11 बजे हमारे दरबार बजे पर जमा प्रोग्राम ही देखेला जमाने सवाल जवाब किस चांद ठीक रहा नको कचाई नु पाके सो वो कीमत से कम दे अगे पर मुकम्मल तो कमाने गलत राह को दिल रहा मुकम्मल गलत दखेरा मुकम्मल गलत दखेरा तुम्हारे सवाल जवाब दे अल्हम्दुलिल्लाह दखेर दो सिफात कॉस्मेटिक्स आप पाकिस्तान सीरम रवाने विटामिन सी सीरम दे और दाखी कीमत बस सिर्फ 200 रुपए में दखेर हां हर जगह खुशहाल हो दखेर नेक्स्ट वीक के बाद दखेर इंशाल्लाह हफ्ते पर मुलाकात कहो दो लोयल अभवान

आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मौसीकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज़, आपका एहसास।

0: तड़ाई मासे में जी दार तो ये जी पता शापर सी देता शाय हो खस्ती थी
1: जनाती से तारखे ना पर शापर के हम एश्मा वाशिंग पाउडर हो खस्ती थी
0: एश्मा वाशिंग पाउडर मड़ाई में जी मोह कोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपने वल वाशिंग पाउडर वड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक की जी दस रंगे सरा प्रोबरे
1: बिल्कुल तारखे ना दा गिले वे हर वक्त मुताहा कुर्श कड़ा हो चे कराना में कुरता एश्मा वाशिंग पाउडर वडल से रिकड़े दी वो स्टूल कुर वाला ना पासूल दी
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अब वो दर तो या एश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खसूसियात थी
1: तारे खाना एश्मा वाशिंग पाउडर खास खसूसियात दागा दी चे कपड़े सब युक्शली को जोर ना जोर दाग पर गारंटे सर खत्म करी जाकर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात एश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवात लोसीना नखर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दर तो ये दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफा बने गलशे अंदरून ला की गेट जान से बे गाले पशे मार्केट से देश मा मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर साहब सर उधर ते मिला भी जी
2: साहब खोर अर लजला यो दमख कुला द पारा क्रीमी रा नगोश्ती दी दुकान हमरा नहेर दे औ क्रीमो नुमा हमरा नहेर
3: वा साकी बस सदा सड़िया उरुसा शॉपिंग सेंटर अंबिरी के लिए तरोशा जिदरला इसमा फार्मूला ब्यूटी क्रीम दरकम نپکی دا سیرم و مکس کول ضرورتش تا او نا ویتامین کپسول او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفه کوی انشاءالله
2: و اشما فرمولا بیوٹی کریم زنده باد

बिल्कुल तरह तरीके हमारे प्रोग्राम तो उतना चाहिए पहले तरीका बिल्कुल देखा लिखा 09272912 यानी 09272192 जीरो नहा दुआ हुआ दुआ नहा यो दुआ नहा दुआ बने काल और सर बिल्कुल 8583 मैंने मैसेज किया से चार तक तरतांगे देर सरा पाइसी भी देर सरा पाइसी लगा हुआ से और ये कहना कि कर्जे पर वर्तला से हमारा माड़ा है कर्जे पर वोड़े कहना हर रोज से साइदो साइदो लिया दे लिया लिया मोबाइल नार पटके मैसेजों के तरसंगे वो लगावे और ग्रामी साथ जुड़ा से ओए हाय ओए हाय जी बिल्कुल अर्जिन के प्रोग्राम से मैसेजों शामिल है जी कालो शामिल है जी और सरा कमेंट वहां शामिल है जी

हाय हाय यही दिमिट मामा जी हम पर काम रहे चेस्ट लामने क्यों सरंगे ये सरंगे हाँ चार शेर तैयार बाद ओ खोल लाओ से डेर चुता मना और जीवला मामा मसला पर काम रहे सलाम टू इंजीनियर एंड योर टीम मनना शुक्रिया मनना मामा जी यह

अच्छी बिल्कुल ना सॉन्ग मेरा सरोवर चला बाद ना सॉन्ग रो सरोवर सॉन्ग रहा फेसबुक का दिन खेल दी फेसबुक वालो रोश रोश रोश रोश रोश याना वेलकम हमर रजा से प्रवाल देरस जी तमाम शुक्रिया और छे वाले वेलकम वेलकम जी साहब सलामना वालेकुम सलाम दे जी तमाम हमर रजा साहब और छे रडना बैठा नहीं है सलाम ना सर वालेकुम सलाम दे रे बेहदा बेहदा मनना मनना मनना और शायद कमरे खेली हुई सलाम ना जी ब्रो वालेकुम सलाम मनना मनना स्पेशल सॉन्ग देता लगा साइदो स्पेशल स्पेशल स्पेशल साइदो बिल्कुल।

बिल्कुल केडे अहमदाबाद फेसबुक मान्य शो समाला शमसाम डेर जबरदस्त शो रवाना था। आई एम डॉक्टर जोए फ्रॉम डोमेन डेर जो तमाना बेहद मानना और जिस तरह बिल्कुल खाना डेर जो तमाना बेहद मानना वैसे जा रहे हैं जिस तरह ऐसे सैली गुन्ना मामूर वजीर अर्क वजीर तुनस्तान मानता शाम तक ट्विटर वाले सलाम डेर जो तमन अर्क वजीर डाली हुई और टोला अशपा में।

हाय बिल्कुल असंग रसरूर दुसंग ना खंदिना मजरो सर होले और सर और सर बिल्कुल इंशाल्लाह दमो पसंदशी स्पेशल मुसाफर बनो नन में जक मुसाफर दे पर सुंदर रोड़ी दिखना छे मो नन विल वी कैन चैनल ऑफ फेसबुक में पर शो वेयर कमो और टोले सुंदर वो जदे मुसाफर बनो मने चलाओ स्पेशल मुसाफर इंशाल्लाह जक छे माशाल्लाह बाबा में शोरवी और शोरो पक्ष शेयर करे दो ओ जक जा मुसाफर दे जम मुसाफर या और देने लवा बाबा खबीब लाहा पर गांव और इसाई दो और सर और सर चे कि मो वाड़ी के यानी वाड़ी के अलमासी के दे यानी सो को आनम हो पर गांव और इसाई दो और चे न दे सलाम न दे खतुन रजी न दे मिसकाल न मिसो जुना रजी और पे इंतजार में सर गे स्पिनिश वाले वाले अशनान तुम रबी मिनिश वाले ममुर वजीर वे चे टुलता दा डाली भी किस्मत तुला टेलर सलो मिनर लो डिबिया डेर जो तमनना और मा सिन्मान वजुलू में चे दे स्टाइली जने खेले ग्रुप ना आउचे डर वाह बाद आप खीरना स्पेशल बरे बरे सलमीना कबील का कुदोसु मामूर जो यूनस हो साबेर वजीर था सुना हुए दिंगे तो सलाम अलैकुम सलाम देर जुता मरना ना और बिल्कुल दिसरा सरा बिल्कुल बल चिकनी क्या ना सरा बिल्कुल ये खाना सब ये सब ये जे सलाम अलैकुम किस्मत लले फ्रॉम स्टाइली ग्रुप सर सलाम एंड भाई खुदूस था सदमान था वो अदनान था वो ममूर था वो आर के बका खेलता सलाम अलैकुम सलाम देर जो तमन्ना देर जो तक खा दमन्ना ओ जे अदनान वजीर किस्मत लले था सर मना स्पेशल सलाम ओ जे था मैं दचा पस्तर गो खतन चार तदा चा किसरा याद देख ले देर जो तमन्ना ओ बिल्कुल खुदूस वजीर दे जने के रोला देखे ना ओ जे जे मिजा सदमान दे ओ सदमान दे देर टाइम बादा रुगले में जे भाई सलामीना में कबील का सदमान ता यूनुस ता ओ को के समात ला लेता मुहूर्त ता ओ टो लिसनर ता सलाम अलैकुम सलाम दे जो तमन्ना ओ तीसरा सरा बिल्कुल वजीर कुल वे के ना के किस्मत ला गाज विच किस्मत भाई के फ्री कपड़े गांडे नजर सेंड को देर जो तमन्ना बिल्कुल फ्री गांडे चाहिए दो ओए है बाद गजर सा डेरा खोयु कलर से मुखले अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम साइलो ठीक रह चुका मन्ना उस दर जरूर बस मिस्टर जी ने दर्शन शामिल कर साइलो और बिल्कुल फिजाना अहमद सलमीना अल्लाह जी वालेकुम सलाम ठीक रह चुका मन्ना अरमाना जी ठीक रह चुका मन्ना अहमद गोल ठीक रह चुका मन्ना वैसे आज सब यही सब यही सब यही मिस्टर जी ना वाल मिस्टर जी ना बिल्कुल ठीक ना नेट मसला को वैसे यार मैं हयात फ्रॉम मकड़वाल गुड प्रोग्राम सलाम सो ऐसे सलाम ओ संदर दे दमसाजी दस्तान वाला गवा ना दे फरमेशी शो न दो वो दमसाजी वाला गाना चिकन दिखे ना नजर लगा वाला है ना शो जग क्या ना ये दहारे शो अपन यू पेट्रन भी ना बिल्कुल अरविंदिंग दा खबर जूम सारा नोट के जो सुमरा हाँ दे मिड अरविंदिंग दी सुमरा दे मिड लिसनर दी अगर सर बिल्कुल दा खबर शरीक की कि दे मु प्रोग्राम चलाई दे दे से बिल्कुल तेज संदर लागी ओ तेज संदर ओ चले जी ओ दे सारा चिकन दिखे ना दे राज भाई किम प्रोग्राम दाई पाहिक शो तो सा गजल मेरा जी चेकी मा दे गजलदार प्रोग्राम दाई वो लला प्रोग्राम चलाई अगर शो बिल्कुल जाड़े संदर जुड़ी हुई दी नदी नु जाड़े संदर उस लला चिकन दे कहना दे मो प्रोग्राम से यानी दे मो प्रोग्राम मुताबिक तेज गाना से चला लका संग चीज तेज गाना चलाऊं दर्शा लला ने चला उलाई जके चीज हारे शो खपल खपल बैठन हुई दर्शा चिकन दे कहना दे राज भाई खपल बैठन हुई दे मो खपल बैठन हुई और दे सारा चिकन दे कहना अधि तारिक भाई खपल बैठन हुई नो प्रोग्राम ना टोल पर बैठन मैंने की यो रूल रेगुलेशन मैंने की दस ने की चीज बस खाली बस स्क्रीन रेड होता बटांग दे वेर के बस प्रोग्राम फिर कहना ना हर शो चिकन दे कहना आयो बैठन मैंने की विसलाम टू रशखान तरखान जी पवो हम नशना ना जी बहार ने लाबो ओ शाह जर्मनी फाई के कायनात फातिमा ओ नुरसैफा ओ जाला मरवा तो छोटा मरवा छोटा गुलाले और उफ खान मलक अल मसे सुमैया एंड समहा ओ एस वजीर दुआ गुल अच्छा कसुक पोती भी अच्छा कसुक पोती भी अगर टोल तम सलाम दिस इज किंग बम जरलाल फ्रॉम मंगल मेला ढेर जूता मनाना अस्सलाम वालेकुम بیگام ہو چی پروگرام با گیارہ بجے شروع کی دی آگا ہو تو نن پہ دس بجے بالکل پروگرام تا رخ لے بالکل نن پہ دس بجے رخ لو السلام علیکم السلام علیکم ہلو
अच्छा साइडो खबर है ना कि डी रुचिता बनाई चीज मिलती है डेडिकेट द रुष्टिकांत भी उड़ते हुए परिंदों का शिकार मत करना जब तक मैं जिंदा हो तो किसी और से प्यार मत करना और रुष्टिकांत में स्पेशल सलाम छोटे अक्सर फ्रॉम कर रख डी रुचिता बना छोटे अक्सर है प्रोग्राम से दे मिस्कल डी रुचिता बना विसलमीना कबील का मेरी भाई तारिक खान शहीद खान अख्तर लला राज लला गुल लला और स्पेशल गुल लला तो अच्छा वैसे आपका शो गप शप 12 बजे तक वो पूरे लुत्फ अंदोज हो सलाउद्दीन फ्रॉम सुरानी डेर जो तमन्ना सलाउद्दीन सुरानी प्रोग्राम से दे मिस्कल डेर जो तमन्ना अस्सलाम वालेकुम ओहो डेर जो तमन्ना बस नूर कलरों से मोन उधारी सही तो नूर कल नौ खुली सही तो उसके क्या ना मिस्कल से कभी बस भी ऐसे ऐसे ऐसे किम निकना गिव अप जोड़ के क्या ना Hey, this is me, King Yeni Amir Barot from Landriak Program. Acha banuna program de mashala der shada. Der juta manana behada manana. Oje kismat wazir o tirman mazlum ta dalvi. Rame atal bhai acha. Oye hai der juta manana. Oje izi besa 10 ke rupaye stala ka. Nan wacha free comment ka. Acha ka ka. Chida pata wala ki. Dear Sita Manana, Behada Manana, Dear Sita Manana, Moki, which is the Tasa Repemption, the Larlan and Program for Juan of Basa, the Sugar Saroki, the Habaradan Dulikali Saito, Dear Sita Behada Manana, Obelkul Nana Chikinikana, Marshala Ataulahana, Dear Sita Manana, the specially Wakana Metoda Borochala Saito, Dildar Kilwashim Ataulabudi Dakana, Ataulahan Momadai. Yeni Tauli, Tauli Khan. Aido. Oche, Mekutur Khan, Mitibai, Nadia Bahar, Zalal, Odlala, Lizimal Tarhan, O Chota Aksa, Tabasum, Fatma Nadan, O Miss You, Fatma Vizirisane, Nadia Bahar, Kahanga, if they Zabarnas, there is Yutaman. Oche, Emo, Message, the Nekul Shamel, Tambasum, Yo, Belkul Message, now you know, particularly, Tolo Shameleji. It's so sweet of a show. Oi Karaka, Tolo, listener to Salamina. Rani de Karakana, Dere Sutamana, Rani de Karakana, the Mr. Dere Sutamana, Timidiba, I was the Okerai, Alam to Cute and listen to the Cute Rani, Sode Mazakavi, Sama Dakaki, Way, Banana, Yaha, Timidiba, Dana Tuda Dalivi, Balta, Achabalta Mangura, Jarana Hafakegum, Pazan Pasilikale, Sargistadi, Tuti Aksa from Karakir Sutamana, Tuti Aksa. Dears you to my Messina, Shirikridi, or dears you to Minaki, which is by Gulshan by Jim Salom del Kavi, Homeshamel Karam Saito, Azabia Shamel Kawichi, Churimush, or Chuta Gulaleta, Sarata, Ikrata, Zonihanta, Tarahanta, Waina Bajita, or Disarta, Sonihanta, Adil Rubata, Alaikum Salam, dears you to Manana, Jimmy Kudoshanamidibai, Chawaji, the comment while told listenerta. Welcome to the Kemina Midibai, dear Timu Baraksha, dear Tambada. Live or live, welcome to Tamara. Live, really, dear Jutamana Beha.

जी बिल्कुल यार विजिंग के प्रोग्राम का टाइम भी क्लियर सर खत्म हो तो बिल्कुल कोशिश मंदाव के चावल में करना पोते नशी अच्छा सलाम जान फ्रॉम कमांगर मिति भाई सलामिना वेलकम टू द शो शो इज वेरी नाइस स्पेशल सलाम टू यूनस वजीर सदमान मसलम ओ ममूर वजीर ओ खैर जुमाहान ओए हे सलाम जाना डियर जूते मिस कवि सलाम जाना डियर जूते पतिना देखे साइदो माशाल्लाह चकी मोहल्ला का मुझ की खबर की मां की साफ जैन शवा के माशाल्लाह डियर लका न पता कबूर न बगुरूर ओडेर सदा बदा दिल होने चके में कना सड़ाई सही दो इस्लाम जाना देखे मंगर वाला ढेर रशी तमाना देखे शुक्रिया देखी मुसम रहा यानी शुक्रिया देखे आओ काम गए बना तक तो रशपाश तो रसाला वरुए इस्लाम जान मीना दम रशी तो इस्लाम जान और यो वेर सरा देखे मा दे अहमेद दे करक वाला देखे मुझ से दिखो नहीं सलाई जाए और शकी रोड बने न बस अखादल तक रेडियो तो रुशी कहना रेडियो से ना हा रेडियो वरुए न दाता बिल्कुल मीना वे कहना देखिए प्रोग्रामिना नखा सुकवी फुल प्रोग्रामिना उरवी और विदिंग बिल्कुल टाइम से देखना टाइम देखी देखी देखी और सर खत्म शो बिल्कुल चांगो चरता चरता प्रोग्राम और दोस्तों ने जियो था यो नडे मना यो जहां मना ना की हद ना जुदा शुक्रिया देखे भी और दिल बिल्कुल तेसरा नाम चिकन लिखना प्रोग्राम पा खेर से सशाई दरता वाला गवो प्रोग्राम पा खेर से बिल्कुल युवादे अमन उल्फात तो दस गम जना वंदे सॉन्ग दरता रखा लगाओ के ना کی پروگرام پخیر چې غم جنای وستندره رجو ته خوان کی بالکل هغه درته لګو د امن الفاتو ډېرې خوندور سونګ دی خوسته یو وکړه کنه جی تاسو بي جي ام نه خواندينه خو له زو دغه نه تاسو صحیح ده تاسو فلحال بي جي ام نه خواندينه خو له خواندينه